0: यहाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

0: घर ये मेरा।
1: नाशिक मध्ये स्वतःच घर, पण लोकेशन, स्पेस आणि लाईफस्टाईल सगळं एका ठिकाणी मिळेल का?
2: अरे मिळेल ना, कारण आता आलंय जय डेव्हलपर्सच साई पार्क। घराचं स्वप्न आता होणार पूर्ण, साई पार्क सोबत आयुष्य होणार सुंदर।
1: विहित गावच्या प्राईम लोकेशन मध्ये रेडी पोझिशन 2 BHK,
2: पाथर्डी देवळाली लिंक रोड ची उत्तम कनेक्टिव्हिटी।
1: तेव्हा आजच विजिट करा साई पार्क नाशिक, संपर्क 7378787890।
3: मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूँ, तो गुजरता हूँ उस गली से, वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंगता सा पुराना खंबा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंबा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंबे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं, आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या?
4: शेती म्हणजे समृद्धी, शेती म्हणजे संपत्ती। येत्या खरीपाच्या हंगामात याच शेतीतून सोनं पिकवण्यासाठी घेऊन येत आहोत कृषी विशेष कार्यक्रम पीक उत्पादन वाढीची पंचसूत्री। सादर करते आहेत डॉक्टर कल्याण पांडुरंग देवळाणकर। जरूर ऐका दर गुरुवारी सकाळी 7:50 आणि पुनःप्रसारण दर सोमवारी सकाळी 7:50 फक्त रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ चॅनलवर।

0: गाना अच्छी होती है।
1: अच्छा, अभी जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा, जिनको गाना सीखना है, मगर हम हमारे पास टीचर नहीं है, हम टीचर के पास जा नहीं सकते किसी वजह से, तो हम हमारी स्केल कैसे ढूंढे?
0: स्केल ढूंढे कैसे? आपको थोड़ा पेटी लेना पड़ेगा, पेटी है जो भी छोटा केसियो, लेके आपका गला को देखना पड़ेगा, ये जो रीड रहता है रीड को टच करके आप देख सकते हैं, ये सीधर से मुझे बरोबर लग रहा है क्या, नीचे गाओगी तो एकदम मोटा लगेगी।
1: आप गा के बता सकती है?
0: हाँ बता सकती हूँ।
1: हाँ, बताइए।
0: जैसे मैं एक भजन गा रही हूँ।
1: और वो स्केल कौन सा है?
0: मेरा स्केल अभी चालू है जी, चालू है जी स्केल में, जी चालू है। जैसे भजन गा रही हूँ तुलसीदास जी के राग भैरवी में, राम राम।

0: ये जो स्केल में गाई,
1: ये अभी जी स्केल था, ये अगर दूसरे स्केल में गाए,
0: मैं बाई चांस मेरा जी स्केल पे, मैं ऊपर स्केल में गाऊंगी, सी के डी में गाऊंगी,
1: तो वो कैसा होगा?
0: तो वो कैसा होगा, तो वो हाई पिच में जाएगा, वो गला सुनाई ठीक से सुनाई नहीं देगा।
1: एग्जांपल दीजिए।
0: वो कर्कश होगा।
1: वो एग्जांपल बताइए।
0: तो अब स्केल चेंज करके बताते हूँ आपको। तो इसमें कहा गला को भी तकलीफ होगी, गला को भी तकलीफ हो, और जो सिंगर है उसको भी अच्छी नहीं लगेगी, सुनने वाले को भी अच्छी नहीं लगेगी। जी अरे वो तो आवाज ऊपर बहुत कर्कश लग रही है, वो अच्छी नहीं लग रही, आवाज अच्छी नहीं लग रही, सुनने में अच्छी नहीं लग, शब्द भी ठीक से नहीं होगी। जिसे अपना जो रेंज है, जो पीच है, उसमें गाना चाहिए।
1: अभी अभी कौन सा स्केल पे गा रही है आप?
0: वो व्हाइट सेवन में मैं गा रही हूँ। हाँ।

0: जैसे मैं एक टीचर हूँ तो हिसाब से जो भी स्केल दे सकते मैं उस स्केल पे, ऐसे रिया साधना है तो हर स्केल पे मैं गा के कर सकती हूँ, पर स्टूडेंट के लिए वो तकलीफ कारक हो जाएगी।
1: मतलब ऐसा है कि जिस आवाज में आप कंफर्टेबल है वो स्केल आपका।
0: यस यस, इसमें इसमें
1: बे मतलब बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं, नीचे जाने की जरूरत
0: नहीं, भाव दो उसमें, स्केल पे भाव दो, उसमें रस लाओ, संगीत में ऐसे गाओ जे सबको अच्छा लगे, सुनने वालों को भी आंख में आंसू आ जाए, वही जरूरी है। हाई पिच जरूर नहीं है, पर मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, एक साधक, बहुत दिन साधना किया, इसलिए कोई भी पिच में मैं गा से कर सकती हूँ।
1: अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस आवाज में हम अच्छे से कंफर्टेबली गा सकती है, वो स्केल पे गाना है।
0: हाँ, बरबर।
1: उसके बाद का रियाज कैसे शुरू करें फिर?
0: उसके बाद
1: गा लेते हैं, बाथरूम में गा लेते हैं, पांच छह दोस्तों के साथ गा लेते हैं, मगर अभी हमें सीरियस गाना गाना है तो क्या करें?
0: तो पहले जो बेसिक रहता है अपना, सारेगामा जे अलंकार है, पलटा है, वो सब
1: सारेगामा कैसे करना है?
0: सारेगामा एक स्केल पकड़े है तो उसमें सा रे शुद्ध गा

0: मतलब ऊपर का सा भी कंफर्टेबली लगना चाहिए, नीचे का सा भी कंफर्टेबली लगना चाहिए,
1: सब सुर क्लियर एकदम कंफर्टेबल लगना चाहिए, तो वो सुनने वाले को अच्छी नहीं लगेगी। और इसमें जो नोट्स है, तीव्रमा है, कोमल गा, कोमल धा, कोमनी, ये जो 12 सुर है वो भी अच्छे से लगना चाहिए वो हिसाब से। और जो अपना बंदिश वगैरह शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, वो बंदिश भी क्लियर आना चाहिए। वो सब गुरु के ज्ञान लेके करना पड़ता है, संगीत ऐसा नहीं होता है।
0: मगर हम गुरु के पास नहीं जा सकते, इसलिए हमने गुरु का अपने पास बुला लिया है, संगीता गुरु संगीत की गुरु हमारी संगीता गुरु है। अच्छा तो सारे गामा कितने देर करना चाहिए डेली?
1: डेली मेरे हिसाब से डेली सुबह का टाइम में रियाज के लिए बहुत अच्छा रहती है, कम से कम

0: डिनर के लिए कम से कम आधा घंटा बैठो रोज, पर जो लोग
1: मतलब शुरुआत ओमकार से करें,
0: ओमकार करें, सिर्फ सा लगाए,
1: सिर्फ सा लगा के बताइए
0: ऐसा सा।

0: इससे जो भी अपना गाय की जो थोड़ा विशारद कर लिए तो गाय की से आगे तो उनके लिए सुर साधना रही थी। सुर साधना जो गुरु के माध्यम से सुर साधना करे, जो सब नोट्स लगाए, बोलते मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तारा सप्तक, तीनों सप्तक में साधना करो, पर बिगनर कर लिख के लिए सिर्फ सारेगामा करो, अलंकार करो, कम से कम आधा घंटा करो, इतना तो करो।
1: मतलब पहले ओमकार करना है,
0: हाँ,
1: फिर सिर्फ सा करना है,
0: सिर्फ सा, बिगनर करे तो सिर्फ सा,
1: मतलब ये 10 मिनट ओमकार, 10 मिनट सिर्फ सा,
0: 10-15 मिनट सिर्फ सा ही कीजिए, सा ही, सा क्लियर हो जाए तो बहुत कुछ क्लियर हो जाती है।
1: ऐसा क्या है सा में?
0: सा में तो ब्रह्म है,
1: जैसे
0: ब्रह्म बोलते सा करो, अपने कुंडलनी जागृत होते हैं, ओमकार करो, ओमकार ही सा होती है।
1: अच्छा,
0: हाँ, सा जो होती है ओमकार, ओ जो होती है वो सा पे कुंडलनी जागृत होते उधर तक जाता है बोलते ना, तो उसमें से सा ही मैंने, सा क्लियर हो जाए ना तो धीरे धीरे पीछे पीछे जो अपने सुर माला है वो आ जाती है।
1: और ये जो कहते कि नाभि से गाना चाहिए, मतलब
0: नाभि से बोलते, पेट से गाना चाहिए, वो जो आकर बोलते, आकर बोल लो, आ मुंह खोल के गाओ, गुरु बोलते पेट से गाओ, मुंह गला को बंद करके मत गाओ, तो मुंह खोल के गाओ।
1: में फर्क बताइए,
0: जिसे मुंह करके
1: नाभि से गा के बताइए,
0: सा ये पेट से आ रहे, सा और मुंह बंद करके सा सा पेट से,
1: मतलब वो सॉफ्टनेस आएगा,
0: सॉफ्टनेस, और सा वो गले से आ रही है, जो क्लियरिटी नहीं आएगा सुर में। पेट से गा तो क्या, पेट और हार्ट लेके जो गाना आता है, जो सुर आते है वो क्लियरिटी लाता है सुर को, क्लियरिटी लाता है। इसलिए बोलते गुरु लोग जे पेट से गाओ, मुंह खोल के गाओ, आ करके गाओ, आ कर में बोलो,
1: मतलब मुंह खुला करके,
0: खुला करके बोलो, सा सा।
1: अच्छा, और चिल्ला के भी नहीं, मुंह खुला करके, मतलब चिल्लाने
0: की नहीं, चिल्लाने का, चिल्ला तो गला खराब हो जाएगी, सुर में कर्कट पन आ जाएगा, कर्कश जो बोलते, चिल्ला के गाना गाने जाए, पूरा जो भी करो सॉफ्ट पन में करो।
1: अच्छा, सबसे मेन सॉफ्टली करना है।
0: हाँ, सॉफ्टली करो,
1: 10 मिनट ओमकार, 10 मिनट सा, हाँ, और उसके बाद सॉफ्टली सारेगामा पा भी सॉफ्ट,
0: हाँ, अलंकार करो, पलटा करो, उसको करो, फिर बाद में राग सीखे होंगे तो राग।
1: पलटा मतलब क्या?
0: पलटा बोलते जिसे सारेगा, सारेगा रेगामा गामा पा, वो को अलंकार बोलते, पर पलटा क्या सर, सुर जो उल्टा पालट की होती है उसको पलटा बोलते,
1: जैसे
0: सागा गा रे सारे नी सारे मामा गा रेगा सारेगा पा पा मा, हाँ, नहीं एक ही बात नहीं है, सागा रेगा सारे नी सारे मा गामा रेगा सारे
1: सारेगा। इससे क्या होता है?
0: पलटा होते जो आप संगीत में एक तान के एक पार्ट है, तान है, सरगम है, वो क्लियरिटी आता है, सारे रे सागा गा रेगा सारे सारे

0: वाह, अच्छा ये पलटा है,
1: पलटा पलटा मदद करते ताना करने के लिए। अच्छा। जो पलटा है सरगम करने के लिए, मागा रे सा नी सा गा मा पा, मागा मागा रे सा नी सा गा गा रे सा नी सा मा गा पा मा धा पा धा पा धा पा मा धा पा धा पा मा नी धा नी पा धा मा पा नी नी धा पा धा मा पा गा मा पा मा गा मा गा रे सा।
0: क्या बात,
1: ये जो चीज है वो जो सरगम पार्ट है, मंत्र को आया ऊपर गया हाई नोट्स गया ये आया, उसी हिसाब से वो बोलते जे पलटा करो, उसमें सरगम पार्ट अच्छी होती है। आकर तो आकर में आकर तान में होती, ये तान पट के लिए भी वो आकर में करना पड़ता है।
0: ये सब आप गा रही है, ये सब पेट से,
1: पेट से करना पड़ता है, हार्ट और पेट। संगीत तो हार्ट, हार्ट की चीज होती है। हाँ। और साधना नाभि से होती,
0: मतलब ब्रीदिंग पेट से, सांस पेट से लेना, पेट भर के,
1: पेट भर के बोलते होता है ना, सा नहीं होती है, सा सा ओ, सब पेट से ही होती है सब काम।
0: और ये जो लोग फिर आप बोल रही सॉफ्ट से गाना, अभी मोहम्मद रफी उनके जैसा ऊपर आवाज पिक्चर में को तो शायद ही किसी का हो,
1: नहीं होगा। हाँ, हाँ, बर, बर,
0: तो फिर वो इतना ऊपर गाते हैं, मतलब वो एक तरह का चिल्लाना ही है।
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए, हम देखिए हमको संगीत का ज्ञान नहीं इसलिए हमारे प्रश्न है ऐसे, हमारे हिसाब से वो चिल्ला के गाते क्योंकि मगर वो इतना उनका चिल्लाना इतना सॉफ्टली होता है, लेकिन हमारा हम जब उनका गाना गाने लगते तो चिल्लाना लगता है, ऐसा क्या फर्क है उसमें?
1: फर्क है कि उन्होंने संगीत को कैप्चर कर किया हुआ है, संगीत साधना की है, जो उनका स्केल भी हाई पिच में है, मन गॉड गिफ्टेड है, और उनके जो गाना है वो संगीत से साधना करने बाद वो पता चल जाता है जे हाई नोट्स में लगाते टाइम जे कैसे गाए, वो नहीं लगेगा जे वो नाक से गा रहे हैं कि चिल्ला के गा रहे हैं, वो कैप्चर आ जाता है वो चीज जो बोलते हैं, तो वो चिल्लाने नहीं होती है,
0: तो उनका वो गॉड गिफ्टेड
1: हाई पिच में उनका गला है, तो अच्छा। वो नहीं होता जे, जे जो वो उनका रेंज नीचे है वो हाई पे नहीं, उनके गॉड गिफ्टेड है, तो वो हाई रेंज में है।
0: मुझे मोहम्मद रफी का कोई ऐसा गाना गाना है तो मैंने क्या करना चाहिए जब मेरी उनकी लेवल नहीं है, हाई स्केल नहीं है, मगर इच्छा है, तो उसके लिए क्या पड़ेगा?
1: आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं है,
0: नहीं, नहीं,
1: थोड़ा साधना सुर साधना करेंगे करेंगे।
0: आप समझ ही नहीं है, मुझे वो लेवल पे मैं कोशिश करके भी नहीं जा सकता हूँ।
1: अच्छा, हाँ,
0: तो फिर उस टाइप में गाने के लिए मेरे हिसाब से हाई स्केल पे जाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए?
1: हाई स्केल पे जाने के लिए कम से कम मुझे लग रहा है भले ही कराओ के है तो कुछ एक गुरु के पास थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट लोग को आप कराओ के गा रहे हैं पर ई टाइप के करो, थोड़ा सा अलंकार साधना करो, थोड़ा सा आइडिया लो, तो हाई पिच में कैसे कर सको कि वो चिल्लाने नहीं लगेगी और सॉफ्टली गा सकते हो, इसलिए आइडिया लेना पड़ेगा किससे,
0: क्योंकि मोहम्मद रफी जिस आसानी से ऊपर चले जाते हैं, बाकी कोई गाए तो वो चिल्लाना ही लगेगा,
1: चिल्लाना ही लगेगा, तो इसलिए वो आइडिया लेना पड़ेगा। उनको तो बोलती हूँ कोई आते जी कराओ के जो गाते हैं थोड़ा आइडिया लेने के लिए जी, ये नोट्स ये जो नोट्स वो लगाना चाहिए ना, तो इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा कोई गुरु से जो शास्त्रीय संगीत गुरु है उनसे आइडिया लीजिए, क्योंकि मोहम्मद रफी जी पूरा संगीत साधक है, मतलब वो उन्होंने संगीत को सीखे हुए हैं, जो भी लता जी है जो है जो आजकल भी श्रेया घोषाल जो भी है तो वो सीखे हुए सब गुरु के, गुरु को पकड़ के सीखे हैं वो लोग।
0: मंडळी आपल्या बरोबर आहेत संगीता जींचे शिष्य संजय डेरे, त्यांचा आवाज मी जेव्हा ऐकतो ना माझ्या अंगावर रोमांचच येतात, त्यांचं तोंड एवढंसं उघडतं, चेहऱ्यावर काही स्ट्रेस नसतं, आणि ते मोहम्मद रफीचे इतके टॉपचे वर्चस्व याचे गाणे कसे काय गाऊ शकतात? संजयजी राम राम, सगळ्यात पहिले मोहम्मद रफीचं तुम्ही ते वर्चस्वरातलं जे गाणं म्हणता आता त्याची झलक दाखवा बरं।
2: सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सबके स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी।
0: संजय जी आता मला तुम्ही ऐकताय आमचं बोलणं, माझा तोच प्रश्न आहे, आता तुम्ही मोहम्मद रफीचे गाणे इतके हाय पिचेस, इतके तुमच्या चेहऱ्यावर काही ना स्ट्रेस नसतो, काही नसतं, तुम्ही तुमचं तोंड पण एवढंच उघडतं, तरी एवढा पॉवर कस काय येतं? तुमची गाण्याची सुरुवात कशी आहे?
2: माझी सुरुवात तशी, माझी खूप लहानपणी सुरुवात झालेली आहे माझी. तिसऱ्या वर्षी मी डॉक्टरकडे ऍडमिट असताना, डॉक्टर नाईक अशोक स्तंभावरचे, माझी आई त्यांना सांगायची माझा संजू खूप छान गातो. त्यावेळेस ते गाणं मला त्यांनी विचारलं कुठलं गाणं गातो. त्यावेळेस मी त्यांना 3 वर्षाचा असताना दम मारो दम मिटे जाय गम हे गाणं, तेव्हापासून मला गाण्याची आवड आहे.
0: मग तुम्ही आता हे जे पॉवर लावता, हे वरचं सूर म्हणतात, त्यावेळेस तुम्ही नेमकं काय करतात?
2: पॉवर लावतो म्हणजे मी
0: का तुम्ही पॉवरच लावत नाही?
2: नाही, पॉवर लावतो, पण ते माझे जे गुरु आहेत मोहम्मद रफी साहेब, खरोखर त्यांचा मला आशीर्वाद आहे. आणि मी घरी रोज सलग 3 तास ते 6 तास मी रियाज करत असतो. कराओकेवर जरी गातो तरी जे गाणं येईल मी ते गातो, त्यामुळे मी स्वतःला तयार करत आहे.
0: तुम्ही रियाज करता म्हणजे नेमकं काय करता रोज?
2: सर मी आता थोडासा क्लासिकल बेसचाही अभ्यास केलाय, 6 लावतो, सारेगम करतो.
0: नाही, थोडस डिटेल मध्ये सांगता तुमचा रियाज दिवसाचा कसा असतो?
2: सुरुवातीला मी सारेगम घेतो 10 मिनिट, त्यानंतर माझं कराओके चालू करतो.
0: तुमचं सारेगम आमच्या स्केलवर म्हणून दाखवा.

0: दखल लिया। इस खूबसूरत मौके पर राजकुमारी को आप लोगों की दखल अंदाजी हरगिज हरगिज पसंद नहीं।
1: इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
0: सुना तुमने, इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
1: देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो इसे।
0: देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो मुझे। सुना नहीं, राजकुमारी कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, वो मुझे यही रखना चाहती है।
1: क्या
0: इतना प्यार हो गया है मुझसे पहली मुलाकात में? अब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये खुशखबरी मैं अपनी माता जी को सुना देना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए बहुत खूबसूरत दुल्हन चुन ली है।
1: बदतमीज।
0: शुक्रिया। अजी सुनिए, वो मेरा पटका आपके पास रह गया है, जरा संभाल के रखेगा, फिर आके ले जाऊंगा।
1: मारो इसे।
2: तुझ्या बुटीक मध्ये आजकाल एवढी गर्दी कशी काय?
3: अगं, मी रेडिओ विश्वास 90.8 वर जाहिरात दिली।
2: खरं की काय? पण त्यासाठी खूप पैसे लागले असतील ना?
3: अगं, अजिबातच नाही, फक्त 100 रुपयात माझ्या व्यवसायाची जाहिरात झाली आणि आता रोज रोज नवीन ग्राहक येतात।
2: अरे वा, मग मीही माझ्या घरगुती मसाल्यांची आणि पापडाची जाहिरात देऊ शकते का?
3: नक्की दे। कमी खर्चात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायचं असेल तर रेडिओ विश्वास हा एक चांगला पर्याय आहे।
2: तुम्ही सुद्धा तुमच्या कोणत्याही व्यवसायाची जाहिरात रेडिओ विश्वास वर नक्की करू शकता।
3: रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ वर जाहिरात द्या फक्त 100 रुपयात।
2: अधिक माहितीसाठी संपर्क 8380016500 आणि 8380016500।

Charlie Gopal. तुम्हारे खोए हुए सर्फ में वापस मिली। हाय देवी माँ से कुछ और भी मांग लेती। गाओ गोपाल गाओ, कितना जीवन की बसंत बाहर गाओ।

0: वो दिन गए जब तुम्हारा जादू सर पे चढ़कर बोला करता था।
1: जानती हूँ, पर क्या करूँ सरकार, उस मुए जोशी के लड़के ने ना जाने क्या कर दिया है। गोपी तो किसी के परवाह ही नहीं करती।
2: मलैया जाओ और नरसिंह जोशी से कहो कि अपने बेटे को समझा ले, नहीं तो हम ऐसी कमंद फेंकेंगे जिसमें बाप और बेटे दोनों झगड़े चले आएंगे।
0: जो सरकार।
3: अरे कहाँ भर गई यार, सुनती नहीं। ओ गोपाल की माँ।
1: क्या बात है जी?
3: हम लुट गए हैं, हमारा सर्वनाश हो गया है और तू पूछती है कि क्या बात है जी।
1: हाय राम, कुछ कहो तो पता चले।
3: अब कहने के लिए रही क्या गया है, ये पिस्टल पैरा कुंडली इसकी इधर को जाती है और वो उधर को जाता है। मैं ज्योतिषविद का माना हुआ पंडित, इसने मेरे सितारों का हिसाब भी गलत कर दिया है।
1: गोपाल की बात कर रहे हो?
3: और क्या, मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ। तेरे इस लाडले ने हमें कहीं का नहीं जाने दिया और तो सब कुछ किया तो किया, अब एक नाची से इसको भगाने लगा है।
1: चांद पर मत थूको, मेरा लाल ऐसा नहीं है।
3: बाहर निकलो तो जानो, लोग अंत शंत बातें कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब इस लड़के का हाथ गले तक ही नहीं, सर तक आ पहुंचा। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। लोग तो अब यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हें भी ब्याह कर नहीं लाया, भगा कर लाया हूँ।
1: भगवान, तो फिर क्या करें? लोगों की जबान थोड़ी ही पकड़ी जा सकती है।
3: हम उनकी जबान नहीं पकड़ सकते, वो भले हमारी टांग पकड़ ले, पगड़ी उछाल दे, इसने तो जोशी कुल का नाम दबो दिया है। कोई यहाँ तक नहीं टिकता, सबके सब बाप दादा और लकड़ दादा तक पहुँच रहे हैं और ये सब दोस्त तुम्हारा है।
1: मेरा दोस्त कैसे हो सकता है?
3: तुमने तो जल्दी की, अगर 2 घंटे इसे देश से जनती तो इसकी कुंडली ही बदल गई होती, लगन बदल गया होता।